0: क्या कहा ते कोरी
1: तो चुको एफे
2: ना फकता है कि
3: ते हराते थी
4: कावना आके
5: को ते नहीं फकता है कि एक कोरी रो आना मुते आइटवा नई ओते तंगता कि ते नहीं मैं एकी आना को ते माते कि ते फटी को इते ते ही पकिया को ओते राके थी काहोकी माय क्या रुआ अनो इंगारी अनो होकी कि ते माते ते तंगता एक कोरी रावा एहोकी माय
1: ते हराते थी कावना आके
0: क्या कहा ते कोरी
1: तो चुको